जिन्हें साहिबजादियां नूं ते माता जी नूं कैद भी रखिया है ते शहीद भी किया है। इतिहास कहिंदा है कि पैरां तों लैके सिर तक वजीर खान दे शरीर दे अनेक टुकड़े किए ते टुकड़े दे शरीर दे फिर खलार दिते है। कावां कुत्तियां ते गिद्धां दे खाण वास्ते दे शरीर दे टुकड़े खलार दिते। इस पापी दा अंग अंग करके कीमा बना के सिखां ने इहनूं इहदे कीते दी सजा दित्ती। 14 मई 1710 वाले दिन बाबा बंदा सिंह दीआं फौजां सरहंद दे अंदर प्रवेश कर जांदियां ने। सरहंद नूं उजाड़िया, सरहंद नूं खूब लुटिया और महल माड़ियां दा नुकसान कीता, इट नाल इट खड़काई। आखर उस तों बाद सरहंद दा सूबेदार भाई बाज सिंह नूं थाप के ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी अगले पासे निकल जांदे ने। वजीर खां दा अंत किवें होया इह कथा तुहाडे सामने रखनी जरूरी सी। इह ते सुणदे आ रहे हां कि गंगू ब्राह्मण ने साहिबजादियां नूं पकड़ाया है मुखबरी करके ते वजीर खां ने ते सुच्चा नंद ने इन्हां ने साहिबजादियां नूं शहीदी देण दा यतन कीता है और शहीद कीता है। इन्हां दोवां दा अंत हुंदा है मैदाने जंग दे अंदर और गंगू दा अंत हुंदा है उहदे घर दे अंदर। ओह मैं अर्ज कर चुका कि ओह अपने घर दे अंदर किस तरह मरिया। केवल इशारतन बेनती, धन दी खुरजी जिहड़ी माता गुजरी जी दे पास सी ओह गंगू ब्राह्मण ने रात दे हनेरे दा लाभ उठा के छपा ली सी। वजीर खां कहन लगा गंगू दे कोल तन है, इहदा तन इहदे घरों लभ के लियाओ। गंगू दी छित्तर परेड होई, मार कुटाई होई ते गंगू मन गया कि हां मैं अपने घर दे अंदर वेड़े विच धन दी खुरजी नूं दबिया है। परमात्मा दी नेत ओह तन उथों कोई दूसरा पुट के लै जांदा है या की कौतक वरतिया। गंगू छपाइयां नूं घर विच लै के आउंदा है, जगह बयान करदा है, इस जगह नूं पुट्टो। जगह पुट्टी गई, तन नहीं निकलिया। दूजी जगह पुट्टो, तन नहीं निकलिया। तीजी जगह पुट्टो, तन नहीं निकलिया। सारा ही वेड़ा पुट्टिया है पर तन किधरों मिलिया नहीं। छपाई दुखी हो गए कि सानू परेशान कर रहे, मेहनत करवाई जा रहे, मिट्टी पुटाई जा रहे, तन मिलदा नहीं ते करदा है सब कुछ जान के। छपाइयां ने जोर जोर दी कुटना शुरू कीता। ए पापी कुट खांदा खांदा अपने ही घर दे अंदर मर जांदा है। हुण मैं तुहाडे ध्यान नूं लै के जाना चाहांगा चमकौर दी गड़ी वल। पिछले दिनां दे अंदर आप चमकौर दी गड़ी दा इतिहास सरवण करदे आ रहे सी। चमकौर दी गड़ी दे अंदर शहीद होण वाले 40 सिंह, 2 साहिबजादे, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दा इतिहास। एक बेनती मैं होर करदा चलां, हर मरण वाला शहीद नहीं हुंदा। एह गल वखरी है कि हर मरण वाले दे नाम दे नाल उहदी कौम, उहदा देश या उहदा परिवार शहीद दा लफ़ज़ जोड़ देंदे ने, पर पता नहीं किन्ने लोग शरीर करके दो दो फाड़ हो के कट्टे वड्डे गए, डिग गए, पर सारे ओ दो फाड़ होने वाले मती दास दे बराबर थोड़ा ने। उन्हां नूं मती दास दा दर्जा देना चाहिए, नहीं दे सकदे। पता नहीं किन्ने लोग अग दे अंदर सड़ के मर गए, पर उन्हां सारियां नूं ना भाई दयाला जी दा रुतबा दे सकने ते ना गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दे बराबर गिणिया जा सकदा। पता नहीं मशीनरी दे अंदर, कारखानियां दे अंदर, शुगर मिलां दे अंदर किन्ने लोग पीड़े गए, पर सारे पीड़े जाण वाले कोई मोती मेरे दी बराबरी थोड़ा ही करदे ने जिहड़ा कोल्लू दे अंदर पीड़िया गया। पता नहीं किन्नियां दे शरीर कीमा कीमा हो गए, पर भाई मणि सिंह दी ते चरण धूड़ वर्गे भी नहीं है। हर मरण वाला मनुख शहीद नहीं हुंदा। इह जिन्हां शहीदां दी दास्तान मैं तुहाडे सामने अर्ज कर रहा, ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਫਤ ਆ ਪਈ ਏ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੌੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਏ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਦੋ ਤਰਫੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ

मत चूका रे मन भेद विभेद न जान बियो पर तच हृदय गुरु अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। आओ प्यारियो, उस गुरु अर्जन देव ने अपने आप नू कुर्बान करके सिखी विच एक नवी रूह फूक दिती। प्यारियो नवा रंग लियांदा गुरु अर्जन देव कृपा करन सानू भी अपने चरण शरण अपने चरणा विच टिका बख्शन। नाम दी दात बख्श के दाता निवाज दे। इनिया को बेनतियां जी प्रवान करनिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा।

तीन वार खूनी किते सके पाए ने, कभी ग्वालियर दे किले विच कैद, कभी 9 साल की उम्र विच पुत्र अचल चला गया, सामने बाबा गुरदत्ता चला गया। ओ गुरु हरगोबिंद साहब ओदे नेत्रा दे सामने सिख कौम दे ओ महान हीरे तोरे, जिन्हां विचों बाबा बुढ़ा। पर मेरा दाता चढ़दी कला विच एदू वध की होवेगा कि सवेरे बच्ची की बरात आनी होवे ते रात नूं दुश्मन आके घेरा पा दे, ओ गुरु फिर भी अडोल रहे। मैं उन्हां दे जीवन की एक झांकी तुहाडे नाल सांझी करके समाप्ति करना। ओ गुरु प्रीत का मुजस्म है, ओनू अज भी प्रीत करो। गुरु हरगोबिंद नूं ओ प्यार वाले नूं गुलवकड़ी विच लैंदा है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब डरौली गए ने। सिख विद्वान कहिंदे ने कुछ दिन डरौली रहे, इहदे नेड़े पिंड च तुलकाणी डरौली दे नेड़े। धन गुरु हरगोबिंद साहिब ने अज सवेरे कह दिता भी तैयारी कर दिओ, आपां कीरतपुर साहिब नूं चले जाणा। सवेर दे दीवान की समाप्ति होई, अरदास होई, समान सारा लद लिया, घोड़े तैयार कर लै। जदों तुर लगे ते गुरु हरगोबिंद साहिब कहिंदे ने अज नहीं जाना, टिक जाओ, अज दा दिन फिर टिकना है। सिखां ने सवाल नहीं किया क्यों, सवेरे तैयारी की जाण दी, अचनचेत रोक दिता है। पुछा महाराज क्यों, साहब कहन लगे अज गुरु नानक दा हुक्म है, ओदे हुक्म विच अज फिर टिक जाओ। सिख समझ गए अज कोई ना कोई कौतक है, साडा इतिहास है। कहिंदे ने सतगुरु सारा दिन टिके रहे ते शाम दा वेला होया, सोदर रहराज साहब दा पाठ होया, कीर्तन होया ते अचनचेत कोलो बरात निकली। बरात वापस आउंदी पई डोली लैके, इत्थे डरौली रात पै गई ते उस बरात नूं लिजाण वाले जिहड़े ने उन्हां ने कहा रात आपां इत्थे रुक जाइए, सवेरे तुरांगे। जदों रुक गए, इधर कीर्तन पिया होवे ते उस डोली विच जिहड़ी बैठी है ना ओ कोई आम औरत नहीं, एक सिख दी धी है ते जिहदे लड़ लगी है ओ सरवर नूं मन्नण वाला, ओ कबरां नूं पूजदा, ओ अमृत वेले सुखमनी पढ़न वाली है, ओ कबरां ते रोड चढ़ांदा है ते ओ गुरबाणी दा कीर्तन करन वाली है। ते जदों डोली तुरी बस मन भर के इको गल कही सी, बापू तू तां मैनूं लड़ ला दिता सरवर दे, सरवर दी पूजा करन वालियां दे, मैं सुखमणी कदी अमृत वेले उस घर विच गाऊंगी, कदी मैं कीर्तन करांगी। कहन लगी बापू तू तां लड़ लाया केड़ा लिखियां नूं मेट गई, पर मैं टेक गुरु दी लैनी आ कि जे सिखी दी दात दित्ती आ ते कृपा करी मेरी ये सिक्खी निभ जाए। ओ बच्ची पालकी विच उस डोली विच बैठी है, जदों ओदे कन्नां विच कीर्तन दी आवाज पई ना ते सिख विद्वान लिखदे ने उहने कहारा नूं पुछिया किसे लंघण वाले आदमी नूं रोको। कहिंदे इक आदमी कोल आया, ओनू झकदी ने पुछया बाबा इस पिंड विच सिख रहिंदे ने? कहन लगा नहीं धीए सिख नहीं, सिख भी रहिंदे ने, इस पिंड विच तां गुरु हरगोबिंद साहिब आए ने, अज सवेरे उन्हां चले जाणा सी, पर पता नहीं अज रात इत्थे क्यों रोक गए ने, सारी तैयारी कीती फिर रोक गए ने। ओदियां अखां भर आईयां, कहन लगी सतगुरु नहीं, लिखे नूं कोई मेटण वाला भी है, अज तू केवल मेरी खातर रुकी है। डोली विचों कहारा नूं सोने दे कंगण दे दिते, गहने ला दिते। कहन लगी डोली किते उस आवाज दे नेड़े लै जाओ। सिख विद्वान सुखबीर सिंह लिखदा डोली नूं दीवान दे कोल लै गए, उतर के थले गई, गुरु हरगोबिंद साहिब बैठे ने, बोले कुछ नहीं केवल मुस्कुरा गए ने। मुस्कुराए, बच्ची ने नमस्कार कीती, कीर्तन विच सब तो पिछे जाके बैठ गई। चेहरा जेड़ा ओ घबराया, रंग जेड़ा ओ पीला पिया। समाप्ति ते साहिब कहिंदे ने बीबी चंद उस बच्ची नूं बुला के लिया, ओदा जोड़ा सुहाग वाला है, पर की कारण ओदे चेहरे ते उदासी क्यों? कहिंदे ने जदों भाई बीबी चंद कोल गया, कहन लगे बेटा तेनू सतगुरु ने बुलाया। कोल गई, बोली कुछ नहीं, केवल अखां दे पानी ने बोल के दस दिता एदे अंदर दी कोई वेदने। साहिब ने प्यार दिता, कहन लगे धीए दस तां सही, जोड़ा सुहागणा वाला तेरा श्रृंगार, तू सुहागण है ना भी आई है, पर अखां विच पानी तेरा क्यों घबराया? कहन लगी सतगुरु

परम सम्मान योग चवल शतर दे मालक जुगह जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों वडभागी हो रात्रि दे इस दीवान विच आप जी ने हाजरी भरी है। सतगुरु जी दे पवित्र घर की मर्यादा मुताबिक सोदर रह राज साहिब जी दे पाठ होए ने, उस तो उपरांत गुरु प्यारियां ने आप जी नूं इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण कराया है, जिथे अगे आपां नेम नाल पिछले कुछ दिनों तो जगत गुरु बाबा सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गुरबाणी श्री जपजी साहिब जी की विचार करते आ रहे हां। उथे अज विशेष तौर पर जिमें कल भी अर्ज की थी, सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी पुरब जो पिछले दिनी बतीत हुए है, ते जिसनू कल इथे दीवान विच गुरु तेग बहादुर जी का शहादत का दिन मनाउंदिया होया कल दे दीवान साहिबां दे चरणां नू समर्पित सन, ते गुरु कृपा नाल आपां ने विचार कीती सी गुरु तेग बहादुर जी दे पावन पवित्र जीवन दी। आओ उस नौवें गुरु नानक जिन्हां ने मजलूमां दी खातर लोड़वंद ते दुखियां दी खातर खास करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बाणी मुताबक तिलक ते जन्यू की खातर जिस सतगुरु ने बंदगी करने वाले कई महापुरुषों की खातर जिस गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने धर्म हित साका किया दुनिया की पदवी लई दुनिया की दौलत लई संसार की शोहरत लई तां अनेकां लोग लड़के मरदे तके ने, पर धर्म दे हित साका केवल गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कीता है। आओ गुरु प्यारो सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी का जीवन जो आपां ने कल विचारिया सी मैं फिर थोड़ा जिहा संखेप विच अर्ज कर दिया, उस लड़ी नूं आपां अगे तोर लईए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आगमन गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब विखे होए है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आनंद कारज शादी जां विआह शब्द असी वरतने हैं कई वारी, आनंद कारज करतारपुर की धरती ते सत्कारयोग जिन्हां नूं आपां माता गुजरी जी कहने हैं उन्हां दे नाल सन 1632 नूं होया। गुरु तेग बहादुर महाराज कीरतपुर साहिब की धरती ते पिता गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद एक रुमाल कटार ते पोथी लैके अपने नानके पिंड बकाले पहुंच गए। माता नानकी इन्हां दे सत्कारयोग माता नाल ने महल माता गुजरी जी नाल ने गुरु तेग बहादुर जी लंबेरा समा इस बाबा बकाला जिसनू आपां अज कहिंदिया नगर नूं इत्थे बैठ के उस प्यारे परमेश्वर की इबादत बंदगी कीती है। गुरु तेग बहादुर जी नूं

लिए हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्की की नींव हम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, एक गल की सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले। पौधा दरते रुख, आज सिख राज दा पहला रुख लग गए, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले। तो ना क्या तुसी ता चले, फिर राज कौन करेगा? कह लगे गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, वजीर खां दुनिया में जालमों का निशान तक मिटाएगी। निशान खत्म हो जाएंगे, पर याद रखी जिते गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रा नु तू खड़े करना है, इत्थे केसरी झूलना ही, इत्थे सिख राज दा सिक्का चलना ही। ते बाकी चलिया मैं अगे चल के बेनती करना वा, दोनों साहिबजादे खलोते ने ते विद्वान कहिंदे ने दीवार ढह पई है, कंध डिग पई है। उस वक्त उन्हां सजना दे कहण मुताबक भाई वीर सिंह जी कवि सैनापत कहिंदे ने जदों दीवार डिगी है उस वक्त दोनों जलादा ने इन्हां बच्चियां दीआं बाहां ते लत्तां नूं घुट के पकड़ लिया है। कहिंदे ने इन्हां पापियां ने बच्चियां नूं कोह कोह के इन्हां दी जिहड़ी आ गर्द ने इन्हां ने शाह रग जिहड़ी है उह खंजर दे नाल कर दित्ती सी। दोनों बच्चे जमीन ते पए ने, इन्हां नूं शहीद कर दिता गया। जदों इन्हां दी शहादत होई उधर हाहाकार मच गई है। कहिंदे ने साध संगत मेरे गुरु कलगी वाले सच्चे पिता उस वक्त राय कल्ले दे कोल पहुंच चुके ने। ध्यान देना थोड़ा जिहा जिहड़ा मैं अर्ज कर रहा, एकाग्रता बख्शनी, राय कल्ले दे कोल पहुंच चुके ने। ते इधर दोनों साहिबजादे शहीद हो गए ते माता गुजरी जी दे कोल संदेश गया है कि माता जी के दोनों साहिबजादे शहीद हो गए ने। हुण कई सज्जन कहिंदे ने माता जी ने हीरा चटिया, कोई कुछ कोई कुछ नहीं। प्यारियो, ओ माता उस अकाल पुरख दे भाणे विच रही है, बच्चियां दी खबर सुनी है ते माता जी भी भरपूर प्याना कर गए। जदो अकाल चलाना कर गए माता जी भी ते साहिबजादे भी शहीद कर दिते। सिख विद्वान ए भी कहिंदे ने कि माता जी नूं भी शहीद किया गया। जदो शहादत हो गई ओ हिंदुस्तान दी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दा संस्कार करन लई लोक जमीन भी नहीं दिंदे पए। धरती ओही है जिस नूं साहिब ने आजाद कराते पए ने, ते गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दीआं लाशां उत्थे सरहंद विच पईआं ने, ते साध संगत कोई संस्कार करन लई जमीन नहीं उस स्थान ही दिंदा पिया। उस वक्त दीवान टुटर मल उठे है। कुछ विद्वान कहिंदे ने इहदे घर संतान नहीं सी। अक्सर घर वाली एक गल कहिंदी सी, रब ने दौलत बड़ी दित्ती है पर घर विच संतान नहीं। ते जदों बच्चियां दी साहिबजादियां दी शहादत होई ते इन्हां ने रुपये लए ने, सोने दीआं मोहरां लईआं ने, ते उस वक्त जमीन खरीदी गई ज्योति स्वरूप जिथे अज सारा सिख जगत झुकदा है, ए टोडर मल ने खरीदी सी ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता दे पुत्रां दा संस्कार अपने हत्थी कीता सी। माता गुजरी जी छोटे साहिबजादियां दा संस्कार कीता गया। गुरु कलगी वाले सच्चे पिता बैठे ने राय कल्ले दे कोल। प्रोफेसर पूरन सिंह लिखदा उस वक्त आवाज दिती, राय कल्ला कहिंदा सतगुरु मेरे लायक कोई सेवा होवे। ते साहिब जी एक गल कहिंदे ने, राय कल्ला एक काम करेगा, मेरे छोटे बच्चियां दा पता नहीं, बुढ़ी मां दा पता नहीं, तेरे कुल कोई बंदा है उन्हां दी खबर लेके आवे। पूरन सिंह कहिंदा ओ सिखा इत्थे एक पिता वाले हिरदे नाल सोच, अपने हिरदे नाल तू देख जिदे पुत्र कई दिनां दे विछड़े होण उन्हें केड़े हिरदे नाल ए गल कही। राय कल्ला तू एक काम कर, जे सेवा कर सकना सरहंद अंदर कोई आदमी भेज, मेरे बच्चियां दा खबरसार तां लेके आवे। उसे वक्त उन्हें एक अपने हलकारे नूं बुलाया। हलकारे दा मतलब है एक थां तो दूजी थां संदेश ले जाण वाला। उस हलकारे दा नाम सी नूरा माही। कुछ माही शब्द इस करके वरतदे ने, ओ मैया दा पाली सी। नूरे माही नूं तोरिया, साहिब कहिंदे नूरिया जा सरहंद दी धरती ते देख के आ के छोटे साहिबजादियां नाल ते माता दा की हाल है। साहिब टिक गए ने, नूरा माही सरहंद नूं गया है ते कहिंदे ने जदों सरहंद पहुंचे खबर सुनी के गुरु गोबिंद सिंह दे छोटे साहिबजादे और माता गुजरी शहीद हो चुके ने। तुरदा ते हुण गुरु गोबिंद सिंह वल पैर पत्तन नूं चित नहीं करदा, केड़े मन नाल जा के कहांगा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह तेरे साहिबजादे शहीद हो गए ने, केड़े मुंह नाल जा के कहांगा के गुरु गोबिंद सिंह जी बुढ़ी मां शहीद हो गई है। पर सतगुरु बैठे ने।
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਆ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚਾੜਖਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਅਜੇ ਨੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੀ ਪਈ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ ਪਰ ਬੜੇ ਆਸਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਕੁੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣੀ ਏ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੂਰਿਆ ਬੋਲ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਨਹੂਸ ਸ਼ਾਮ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੂਰਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਿਆ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਦੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਮ ਆਖਰੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਦਿਨ ਛਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿਚ ਜਿੰਦ ਛਿਪਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਚਿਣਿਆ, ਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤੀਰ ਪਕੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਏ, ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੜ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਾਲਮ ਏ। ਆਖਿਰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਵੀ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਏ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਏ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਰਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਜੜ ਪੜ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਦੋ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਠੰਡੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਟਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੁਵੇ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪੜੇ ਜੋ ਹਟੈ ਹਟ ਬਕਾਏ, ਰੋਵੋ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਵੋ ਨਾ ਸੱਜਣੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਓ ਰਾਏ ਕੱਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
दया सिंह कहिंदा सच्चे पातशाह अगा कुछ नहीं कह सकिया। तो कवि कहिंदा साहब कहिंदे ने दया सिंह पातशाह ना कहे। पुछया क्यों? कहन लगे पातशाह तां ओ वे जेड़ा सब कुछ इको बारी सौंप देवे। सजना उथे उन्हें चार पंक्तियां कहियां दर्दनाक। कह लगे भाई दया सिंह जी तहिंदे देश दा जदो सहारा नहीं सी उदो पिता मैं इस देश तो वारिया मैं। माता गुजरी विच सरहंद गुजरी समा गुजरिया जिवें गुजारिया मैं। चार पुत्र सन बख्शे परमात्मा ने ओ भी जोड़ा जोड़ा करके वारिया मैं। मत कहो सिखो मेनू शहनशाह किश्ता नाल तां कर्ज उतारिया। मैं उस मालिक दा शुक्र पिया करना वा साहबजादियां दी शहादत होई जालम राज दी जड़ पती। औरंगजेब नू जफरनामा लिखिया ते लिख दे पए ने औरंगजेब मत घबरा मेरे चार पुत्र को के मार दिते अजे खालसा बैठा है किन्ने कु को के मारेगा। प्यारियो इसे धरती ते राय कल्ले ने चरण पकड़ के क्या सी दाता मुसलमान ता मैं भी हां। साहब ने असीस दिती राय कल्ला आ कृपान मेरी सांभ के रखी जिन्नी देर तक सत्कार करेगा तेनू किसे चीज की कमी नहीं तेरे घर घाटा नहीं रहना। बेद भी ना करी कवि संतोख सिंह कहिंदे ने उहने अदब किया ओहदे पुत्र ने अदब किया। कवि जी कहिंदे ने जदों असीं छोटे सां ओहदे पोतरे ने बेदबी की पर पोते ने ते उसे कृपान दे नाल उहदी मौत हो गई सी। ओ श्री साहब गुरुद्वारा सिरपाओ साहब नाभे विखे पई है। खैर गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्र साहबजादे शहीद हो गए ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी जफरनामा लिखते ने ता भी ओ चढ़दी कला दे अंदर। ते अज उन्हां बाबिआं नूं असीं याद पै करने आ जेड़ी मैं अर्ज करनी चाहना वा। गुरु के प्यारियो कदी उन्हां दे जीवन नूं तको ओ खलो के एक आवाज कहिंदे ने सरहंद अंदर कि असीं चार नहीं असीं हजार आ। ते करम सिंह हिस्टोरियन लिखते ने सिखा ने एक दृढ़ इरादा कर लिया कि ओनी देर तक चैन नाल नहीं बहना जिन्नी देर तक असीं सरहंद नूं गर्क नहीं कर देंदे। करम सिंह हिस्टोरियन ने कुछ कु उदाहरणा दित्तियां ने इस शहादत ने रंग ही लियांदा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर दखण तो आए ने ते अमृत दी दात दे के तोरिया है। ते एक गल कही सी गुरबख्श सिंह चलना तू सरहंद भी पहुंचना है पर सरहद तो पहला संडौरे जरूर जाई। उथे एक मेरा परम मित्र पीर बुद्धू शाह सी जिन्हू जालम ने को के मारे है उस जालम नू सजा जरूर देवी। जदो तुरिया बाबा बंदा सिंह बहादुर कहिंदे ने पहुंचन लगा है सरहंद ते करम सिंह हिस्टोरियन कहिंदा है उन्हें इको गल कही सी मैं उतन भी अर्ज कीती सी कि सिखो चमकौर दी गड़ी ते सरहंद दियां नीयां अपने वीरां नू आवाजां पईयां मार दियां। ओ कहिंदा हमला कीता सरहंद नू फतेह कीता है ते बंदा सिंह बहादुर ने कुछ कोई इमारतां रहण दित्तियां। हुण मैं अर्ज कर रहा सिखां ने एक इरादा कीता दृढ़ता नाल के सरहंद नू नहीं रहण देना ते जो इरादा कीता दृढ़ता नाल ओ पूरा होया। साल भावे किन्ने लग गए शहादतां किन्ना होईयां। बंदा सिंह बहादुर तो बाद संमत आउंदा 1811 ध्यान देना मैं कुछ कुछ संमत अर्ज कर लगा। करम सिंह हिस्टोरियन कहिंदा है कि उस वक्त सिख 10,000 आया है उन्हें सरहंद नू चीर के पार निकल गया है पर अजे एक गर्क नहीं हुई। संमत आया 1814 उदो फिर सिखा ने हल्ला कीता सरहंद कुछ कु लुटी फिर निकल गया पूरी गर्क नहीं हुई। संमत आया 1816 फिर इना हल्ला कीता समत आया 1818 फिर हमला कीता ते जदो इना पंजवा हमला कीता समत 1820 दे अंदर उदो सारी सरहंद नू गर्क कर दिता ते किन्ने सिख सरदारा ने उस सरहंद दे उपर हल वाया ते हुक्म कीता सी कि सरहंद दियां पांच पांच इटा जेड़ियां ने ओ हर एक सिख जेड़ा है ओ सतलुज में सट के आवे क्योंकि गुरु मारी सरहंद है। जेड़ा दृढ़ इरादा कीता ओदे ते पार होए। प्यारियो आओ जिस गुरु गोबिंद सिंह दे चरण असी भी परस लईए। मैं अर्ज करा कदी उस गुरु गोबिंद सिंह दे बन के ता देखो भावा असी आम तौर ते हुण अनाउंस भी करने पए आ कि अमृत दी दात लवो गुरु वाले बनो। सिंह साहब आ रहे ने उहनां नूं असी जी आया भी कहना है इस करके क्योंकि ओ श्री अकाल तख्त साहब दे सेवादार ने उस तख्त तों आ रहे ने। हर सिख जिहड़ा गुरु नानक नाम लेवा ओदे मन अंदर उस तख्त दा अदब है। पर आपा गुरु गोबिंद सिंह दे बन क्यों नहीं जांदे? प्रोफेसर पूरन सिंह ने
एक बड़े कमाल की गल कही सी भावा वह कवि सज्जन है वह कहता है मेरा दिल किया कि मैं मूर्तिकार बन जावा ते गुरु गोबिंद सिंह की मूर्त बनावा ते मूर्त बनाने तो बाद सतलुज दे विच जल प्रवाह कर दिया ते थले लिख दिया ए भी गुरु गोबिंद सिंह की मूर्त नहीं। ध्यान देना सिखी का सिद्धांत की है। वह कहना मैं मूर्त बनावा थले लिख दिया गुरु गोबिंद सिंह तेरी ए मूर्त नहीं फिर बनावा फिर जल प्रवाह कर दिया फिर बनावा फिर पानी विच जल प्रवाह करा ते वेखण वाले लोग कहन के अद्धी उम्र तां ए मूर्तियां बनाने की जा सकता रहा ते अद्धी जिंदगी बनांदा रहा पर मोए तो बड़ी एक भी ना शब्द वर्त्या मोए तो बड़ी एक भी ना लोग मेनू ए कहन ते मैं जाके पुछा गंगा नू के तू बोल खां तेरे किनारे ते कलगी वाले ने बाल चोज कीते मेरा गुरु गोबिंद सिंह क्यों जिया सी बाल उम्र अंदर मेनू बोल के दस मैं ओदी तस्वीर बनानी है। पर गंगा बोल के कह ना इको गल कह पूर्ण सया तस्वीरां बनान तुर पे जेड़ा कलगी वाले नू परस लैंदा ही ओ कलगी वाले दी तस्वीर नू हिरदे विच लुका लैंदा ही बोलदा नहीं। कहना मैं पुछा सतलुज तो आके के दस का सजना तेरे किनारे कलगी वाले रहे भरावा तू ओदन दा तुरया मेरा गुरु गोबिंद सिंह की हो जासी ओ भी चोपे। मैं पुछा जाके नदेड़ दी गदावरी तो के मेरा गुरु गोबिंद सिंह की हो जाए मैं मूर्त बनानी है ओ भी चोपे। मैं पुछा जाके अबचल दे शस्त्रा तो मेरा गुरु गोबिंद सिंह की हो जाए ओ भी चोपे। ते कहना जदो मैं सारिया नू पुछया ते इको आवाज आई ओ पूर्ण सया तू गुरु गोबिंद सिंह दिया मूर्तां कागज ते ना बना। याद रखी गुरु गोबिंद सिंह दी मूर्त कागज ते नहीं ओ बननी जतन भी करे ते ता भी नहीं बननी गुरु गोबिंद सिंह दी मूर्त बनती है एक गुरसिख दे हिरदे उते। तू हिरदे ते मूर्त बना गुरु गोबिंद सिंह दी मूर्त बनती है हिरदे दे उते। ते पूरन सिंह अगे लिखदा है ओथो पूरन सिंह छड कागज ते रंगा दे डब्बे नू चल किसे गुरु गोबिंद सिंह दे सिख दे दर्शन कर ओदे हिरदे ते मूर्त ते जदो पर्दा चुके ते थल्यो मूर्त कह तू मैं गुरु कह मूर्त विचो तू मैं ते सिख कह मैं तू ते तू तू विच इना कु लुई हो जान ते गुरु गोबिंद सिंह ते सिख विच अंतर ही कोई ना रहे। अखीर विच कहिंदा खालसा वीर भैन असी कागज दिया मूर्ता बनाईया पर हिरदे ते गुरु गोबिंद सिंह नू टिकाया ही ना हिरदे ते ओदी मूर्त बनाई ना ओनू हिरदे ते टिका ते याद रखी मैं तू ते तू मैं बन जाएगा। वो एक गल कहिंदा है कि तू सुहाग वाला बन जा गुरु गोबिंद सिंह दे अमृत दी दात लै अमृत दी दात लै के कमाई करी बस उसे हिरदे उते गुरु गोबिंद सिंह दी मूर्त बन जांदी। प्यारियो आओ आपां भी उस गुरु दा शुक्र करिए किन्ना कु शुक्र करांगे। मैं अल्लाह यारखां जोगी दियां इन्हां पंक्तियां नाल समाप्ति करनी चाहांगा। उन्हें तर्क नहीं कीता वो हकीकत कह रहा है कहिंदा जदों मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दी नज़्म लिखना वा हैरान हुंदा वा गुरु गोबिंद सिंह तुसी एक बंदे अंदर इन्ने गुण पा दिते। हिंदुस्तान दी पुरानी फिलासफी है सिमरतियां दी पुराणा दी वेदां दी के चार बंदे वक वक चार काम कर दे के ब्राह्मण केवल पढ़ सकदा पढ़ा सकदा जां लोकां नूं कथा सुणांदा जां ओ वख्यान दिंदा खत्री केवल जंग करदा वैश केवल वाही करदा ते शूदर जेड़ा ओदे भागां विच पढ़ना की ओने तां बाकी तिन्नां दी सेवा करनी झाड़ू लाना गंद बाहर सटना। ओ कहिंदा हैरानगी दी गल जेड़ा समाज चार वर्णा विच वंडिया होया सी मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी तुसी चारे गुण एक दे अंदर भर दिते ने। पुछया किवें कहिंदा जदों मैं देखना ना तेरा बाबा दीप सिंह दी जीवन दी गल करदिया कि उन्हां ने कलम पकड़ी है दमदमा साहब दी धरती ते गुरु ग्रंथ साहब दी बीड़ लिखते ने उदो तेरा सिख महान पंडित है उदो विद्वान ब्राह्मण है ते जदो ओही खबर सुनदा है कि अमृतसर दी धरती ते हमला हो गया है ते 80 साल दा बाबा कलम रख के खंडे नू हथ पांदा है ते उदो तेरा सिख खत्री वाला काम कर दई कहन लगे जदो ओही हल वांदा है ते दसवंध कढ़दा है उदो वैश वाला काम कर दई ते जेड़े शूदर वाले काम लोकी नफरत करदे ने ते तेरी कमाई वाले सिख सारा दिन लंगर दे भांडिया विच खलोते रहिंदे सारा दिन झाड़ू लांदे ने। तू एक सिख अंदर सारे गुण भर दिते ओने जेड़ी एक गल की तरला लिया कहिंदा सिखो एक गल उन्हें बड़ी सोहनी कही ओनू किसे कहा सी तेनू खुदा ने घर भी थां नहीं देनी तू काफरां दी बोली बोलना
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਖਾਤ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹਕੀਕਤ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੁਪਤਨੀ ਸਕਾ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਏ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਏ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਵਿਖਰੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਏ, ਇਧਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਡੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਉਹ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੱਲਿਆ, ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਪਿਆਲ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਦਰ ਪਾਏ ਤਸਕੀਨ ਜ਼ਿਗਰ ਥਾ, ਸੀਤਾ ਕੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਬਨ ਰਾਮ ਕੋ ਘਰ ਥਾ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਨਹਿਆ ਨਾ ਉਨਕਾ ਪਿਸਰ ਥਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਜ਼ਿਗਰ ਥਾ, ਕਟਾ ਦੀਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਗੀਤਾ ਕੋ ਸੁਣਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਚੇਲੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਟਵਾ ਦੀਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਗੀਤਾ ਕੋ ਸੁਣਾ ਕਰ, ਪਰ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕਟਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਉਸ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਹਰ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਹੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਏ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਵਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੋ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਈਏ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੈਮਾਨਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ।

0: नहीं पैणो तुहानू पता नहीं, भावें मंगते बेअंत ने, देण वाला दाता एक है, वो एक दाता सारी सृष्टि की परवरिश करदा ते हर एक नू ओ रिजक पहुंचांदा है।
1: सब दिन सब को भोग भुगावे, कर हार को जीवत पावे।
0: जितने भी जीव तुसी देख दे हो, तुसी सोच दियो कि साडा बापू सानू दिंदा है, पर कदी पानी विच झाती मारी जे उथे तां साडा बापू किसे नू रिजक नहीं दिंदा। कदी धरती विच रहण वाले तुसी जीवां वल देखिया है, उथे तां साडा बापू रिजक नहीं दिंदा। उगी हुई बनस्पति नू तां साडा बापू नहीं पालदा। एक केवल असी अपनी सोच नाल कह रही हां कि साडा बापू सानू सब कुछ दिंदा है, असल विच एक होर है जिहड़ा साडे बापू दी झोली विच वी दात पांदा है। ओह केवल एक दाता परमेश्वर है, ओहदे तो बिना रिज़क किन्ने देना है।
1: सोना दे सब लहे मिनास, तिस बिन कहां जीण की आस।
0: कह लगे जे ओ परमेश्वर रिज़क ना दे ते चेते रखना किसे नू मिले भी ना, सारे विनाश हो जान, खत्म हो जान। भैनो रिजक देने वाला केवल एक परमेश्वर जे। मेरे सतगुरु ने ना यही बचन बाणी विच दृढ़ कराए। देखो गुरमुखो, एक बच्ची दे बचना ते भरोसा कर ले ते सिदक नाल ओ भी जित सकदी है। मेरा सतगुरु ता रोज आवाज दे के कहिंदा काहे रे मन चितवै उदम, जां आहर हर जी उपरिया, सैल पत्थर में जंतु उपाए ता का रिजक आगे कर धरिया। ओने पत्थर भी जीव पैदा कीते, रिजक ओना नू दिता है। सतगुरु फिर असी की करिए। कह लगे मेरे माधो जी, सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया, जनन पिता लोक सोत बनता, कोई न किसकी तरिया। कह लगे चाहे मां होवे जनन, पिता भावे बापू होवे, पुत्र होवे भावे स्त्री होवे, कोई किसे नू रिजक देन वाला नहीं। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी धरिया। कह लगे उड़ा उड़ आवे सह पोसा, तिस पाछे बचरे सरिया। हुण तू कहना मेरी मां बाप मेनू रिजक देंदे ने, पर कूंज ता अपने बच्चे कोल नहीं। उड़ा उड़ आवे सह पोसा, ओ सैकड़े को अपने बच्चियां तो दूर चली गई, पर उन्हां बच्चियां नू कौन खवांदा पे। उड़ा उड़ आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे सरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे। मन में सिमरन करिया, मेरा गुरु ग्रंथ साहिब ता उच्ची आवाज विच कहिंदा है, पहलो देता रिजक समा। जेड़ा जीव तू पैदा कीता है ना, पहला तू एदा रिजक पैदा कीता है। यही कारण के मनुख दा जन्म बाद विच जन्म दे खून तो पहला इनू माता दे दुध दा प्रबंध कर दिता है। सतगुरु ने बाणी विच कहा पहलो देता है रिजक समा, पिछों देता है जंत उपा। साहब ने बाणी विच कहा, कहन लगे जननी केरे उधर उदक में, पिंड किया दस द्वारा, माता दे उधर विच तेरे पानी दे विच तेरा उन्हें शरीर बना दिता, जिसे दिस दे दस दरवाजे ने, राग आसा भगत धन्ना जी। जननी केरे उधर उदक में, पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अग्न में रख है ऐसा खत्म हमारा। कहन लगे जेड़ा अग विच रोटी देंदा है, एवें तू कहना फलाना बंदा देंदा है, अग विच जेड़ा रिजक देंदा सी ओही तेनू इत्थे रोजी पिया देंदा है। कहन लगे कुम्मी जल में तन तिस बाहर, कछु कुम्मी पानी विच, आंडे ओदे रेते ते पए ने, पंख खीर तिन नाहीं, ना आंडिया नू खंभ, ना ओना दे दुध दा प्रबंध, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही, पा खान कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नहीं। कहिंदे ने पत्थर दा कीड़ा पत्थर दे वेचे, कोई रस्ता नहीं जिस रस्ते आपां रिजक पहुंचा सकीए। देख तन्या जे पत्थर विच पैदा कीते कीड़े नू रिजक देंदा है, तू बंदे दी आस ना करी, देण वाला केवल एक ओही आ। साहब कहिंदे ने बाणी अंदर पा खान कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नहीं। कह तन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जीड नहीं, एवें जी मेरे मना तू डरदा ना रही। ए बच्ची कहिंदी नै भैणो तुसी भुलेखे विचो, ए सारी सृष्टि दी पालना कोई होर पिया करदा है, मैं तां गुरमुखां तो बचन सुन के आई हां। ओ तां कहिंदे ने आसन लोए लोए भंडार, ओदा टिकाणा हर इक लोक दे विच, जो किछ पाया सो इक आवार। कहन लगी मैं तां बचन सुने ने महापुरशां तो कि रिजक देण वाला कोई मां बाप नहीं, केवल एक वाहिगुरु है। राव

नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

गुरु अर्जुन विगनन के नाशक, विगनन के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह